0: प्रभु, हे दयालु, सबके पालनहार, आई इंप्लोर यू, प्लीज प्लीज ब्लेस दिस न्यू वेंचर ऑफ आर मोस्ट डियर श्री अमित कुमार. मेक दिस फिल्म अ सुपर हिट फॉर सर, फॉर विदाउट यू दिस फिल्म कैनॉट बी अ हिट. यू हैव टू डू एवरीथिंग. देर इज नो वन एल्स हु कैन हेल्प दिस ग्रेट प्रोडक्शन यूनिट एंड अमित कुमार जी विदाउट यू. हे वेंकटेश्वरा, हे वेंकटेश्वरा, प्लीज डू एवरीथिंग सर, प्लीज डू.
1: Even during the muhurat of the last Telugu film, Maya Bazaar, they said the same thing to me.

0: Are you okay, sir?
1: Oh, I'm okay.
2: Sir, कमाल कर दिया सर, आप तो महान है।
3: वाह वाह, तुसी तो तोप हो सर।
4: अमित जी, टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर यू। यू हैव बीन डिक्लेयर्ड द अवार्ड विनर फॉर द बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट कॉस्ट्यूम, ऑल फॉर योर लास्ट फिल्म माया बाजार।
5: इज दैट सो? ओह गॉड, आई कैन बिलीव दिस।
6: Sir, please see that you adjust your diary and are present at the awards function on time, sir. Please, sir.
7: Secretary.
8: Yes, sir.
7: Please note the time of the awards function. Find out the dress code. You know I have to look the best.
5: And what about me? Am I not invited?

0: And now, ladies and gentlemen, I call upon Shri Lalu Pashupati Nath, our revered minister for information and broadcasting, to come upon stage and give away the awards of the day. Shri Pashupati Nath Ji.
1: भाइयों और बहनों, आज की रात बहुत सुहानी है और अब मैं पेश करने वाला हूं द बेस्ट फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2005। फिल्म है माया बाजार। मैं हीरो श्री अमित कुमार जी को फिल्म के यूनिट की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे मंच पे आएं और ये अवार्ड स्वीकार करें। श्री अमित कुमार जी।

तन तन संपै सुख दियो अर जह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो चतर सुजान जेहते उपजियो नानका लीन ताहे मेहमान कट कट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्त निंदया नाहे जेहे कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग जेह माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना तहकट ब्रह्म निवास जेह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होए तह काम जेहबा गुण गोबिंद पजहो करण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना पर है न जम कै ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक अपन तरै और न लेत उधार जो सुपना यार पेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सह नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कशु ना चेतई
मद माया के अंध कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जौ सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण ता वही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम कहो नानक बे

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक थिर नारा।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ नाम रहयो साधु रहयो गुरु गोबिंद कहो नानक एह जगत मैं किन जपयो गुरमंत राम नाम उर मैं गयो जा कै सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच परंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंच महर्ख दिशाक सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र दुतिया माल कौसकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटयाओ पहोरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुण्य आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावे पांचौ संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचौ थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावे पांचौ संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचौ चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा
ਖਸ਼ਟ ਰਾਗਿਉ ਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ ਸਬੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹਿ ਦਸ ਬੀਸ ਖਸ਼ਟ ਰਾਗਿਉ ਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀਤੀਸ ਸਬੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹਿ ਦਸ ਬੀਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर रावण दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देख चलाही तेग माही देख के अंडिठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदियां अनेका भुलां होईयां होणगियां पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार।

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे ऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै।

0: कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नासै सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: This is Radio Sai Global Harmony. You will now hear a selection of devotional songs